यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायकरूपेण मम पतिः विठ्ठलमहोदयः अत्र अस्ति। अद्य पठनविषयः अस्ति क्रियापदम्। क्रियापदं क्रियां बोधयति। तो आज हम क्रियापद के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रियापद क्या होता है? तो वाक्य में जो क्रिया का बोध कराता है वो क्रियापद होता है। जैसे बालकः पठति, अत्र पठति इति क्रियापदम्। त्वं पठसि, अत्र पठसि इति क्रियापदम्। अहं पठामि, अत्र पठामि इति क्रियापदम्। क्रियापदानां बहूनि रूपाणि सन्ति, यथा पठति, पठसि, पठामि। परन्तु एतेषां रूपाणां धातुः अस्ति पठ। तर्हि पठ को बोलते हैं धातु। धातु यानी क्या होता है? क्रियापद का जो मूल रूप है वो है। तो पठ इति धातु, उसके अलग अलग रूप है, जैसे पठति, पठसि, पठामि, पठतु, पठन्ति इत्यादि। तो आइए पढ़ते हैं। क्रियापदस्य मूलम धातु। क्रियापदस्य पुरुषः वचनम लकारः च भवति। उदाहरणं वदामि। बालकः पठति इति एकं वाक्यम्। अत्र बालकः कर्तृपदम्, बालकः क्रियां करोति। का क्रिया तत्र? तर्हि पठनक्रिया। अतः इति क्रियापदम्। बालक पढ़ता है, तो पढ़ता है यह हो गया क्रियापद। पठति क्रियापदस्य पुरुषः प्रथमपुरुषः, वचनम् एकवचनम्, लकारः लट् लकारः। आंग्लभाषायां रीड्स इज अ वर्ब, यानी क्रियापद रीड्स होता है। तो इट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्रेजेंट टेंस। तो क्या हुआ, हिंदी में कैसा बोलेंगे? बालकः पढ़ता है, तो पढ़ता है ये क्रियापद हो गया, उसका थर्ड पर्सन बोलेंगे, एक वचन है और वर्तमान काल है। तो संस्कृत में वर्तमान काल को बोलते हैं लट लकार। तो ऐसे कुछ नए टेक्निकल शब्द यहाँ आज आएंगे, आप सुनिए, उदाहरण देखेंगे तो फिर आसान लगेगा। संस्कृत भाषायां पुरुषत्रयम् अस्ति, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च। आंग्लभाषायां दे आर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन रेस्पेक्टिवली। संस्कृत भाषायां वचनत्रयम् अस्ति, यथा एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव ओनली टू, एकवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषायां दशलकाराः सन्ति। लकारः इत्युक्ते टेंसेस एंड मूड्स। लाइक टेंसेस आपको मालूम है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वैसे। तो अब थोड़े वाक्य देखते हैं। बालकः पठति, अस्मिन् वाक्ये पठति इति क्रियापदम् प्रथम पुरुषे एकवचने लट् लकारे इत्युक्ते वर्तमानकाले अस्ति। बालकः पठिष्यति, बालकः श्वः पठिष्यति, इसका मतलब क्या हो गया? बालक कल पढ़ेगा। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य। तो पठिष्यति, अत्र क्रियापदम् प्रथम पुरुषे एकवचने लुट् लकारे, यानी भविष्यत् काले अस्ति। तर्हि पठति वर्तमान कालः, पठिष्यति भविष्यत् कालः। तथैव बालकः ह्यः अपठत्, यानी बालक ने कल पढ़ लिया। तो ये हो गया भूतकाल। तो इसको बोलते हैं लंग लकार। तो ऐसे बहुत सारे, यानी 10 लकार है संस्कृत में, और हम बहुत सारे क्रियापदों का, लकारों का उपयोग करते आए हैं पिछले लेसन्स में। तो वाक्यों से पता चलेगा और आप बोलेंगे, अरे अरे ये तो हमने सुना है और ये तो आसान भी है। तो धीरज रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वाक्य देखेंगे। तो बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, मतलब क्या हुआ? बालक हर रोज विद्यालय जाता है। तो बालक जो है एक वचन में है, जाता है क्रियापद है, वो भी एक वचन में है, और काल कौन सा है? वर्तमान काल है, क्योंकि रोज जाता है। बालक विद्यालय जाता है। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। अत्र गच्छति इति क्रियापदम् प्रथम पुरुषे एकवचने लट् लकारे, यानी वर्तमान काले अस्ति। बालकः श्वः विद्यालयं गमिष्यति, बालक कल विद्यालय जाएगा। तो कल जाएगा, आज नहीं कल। तो अत्र भविष्यत् काल है, बालकः श्वः विद्यालयं गमिष्यति. गमिष्यति इति क्रियापदं प्रथमपुरुषे एकवचने लुट् लकारे इत्युक्ते भविष्यत्काले अस्ति. बालकः ह्यः विद्यालयम् अगच्छत्, इसका मतलब है बालक कल विद्यालय गया. तो अगच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति, तत् अस्ति प्रथमपुरुषे एकवचने लङ् लकारे इत्युक्ते भूतकाले. तर्हि क्रियापदम् इत्युक्ते तस्य पुरुषः, वचनं लकारः भवति. इदानीं प्रथमपुरुषः अभवत्, यथा बालकः गच्छति, सः गच्छति. इदानीं मध्यमपुरुष देखेंगे, वाक्य होता है त्वं विद्यालयं गच्छसि. गच्छसि इति क्रियापदम्, गच्छसि इति क्रियापदम् मध्यमपुरुषे एकवचने लट् लकारे अस्ति. त्वं विद्यालयं गच्छसि, ठीक है, तो गच्छसि, त्वं विद्यालयं गच्छसि इति क्रियापदम् मध्यमपुरुषे एकवचने लट् लकारे अस्ति. अहं विद्यालयं गच्छामि, अत्र गच्छामि इति क्रियापदम्, तत् क्रियापदम् अस्ति उत्तमपुरुषे एकवचने लट् लकारे. क्योंकि यहाँ क्या है, मतलब अहम विद्यालयं गच्छामि इत्युक्ते मैं विद्यालय जाती हूँ. तो जाती हूँ ये उत्तम पुरुष का रूप है गच्छामि, और लट् लकार है वर्तमान काल है. तथैव वयं विद्यालयं गच्छामः, गच्छामः इति क्रियापदम् उत्तम पुरुषे बहुवचने लट् लकारे अस्ति. तर्हि अत्र पुरुषत्रयम् अस्ति, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः. उदाहरणं कथम् अस्ति, गच्छति, गच्छसि, गच्छामि, ये सब लट् लकार के रूप हो गए. वैसे ही हमने भविष्यत्काल यानी गमिष्यति, गमिष्यसि, ऐसे देखेंगे तो वो भविष्यत्काल के रूप हो गए. वैसे ही अगच्छत्, अगच्छम् इति रूपाणि भवन्ति, तानि भूतकालस्य रूपाणि. किञ्चित् ज्ञातवन्तः खलु, उदाहरणानि पुनः पश्यामः. पुनः तत्र गच्छतु इति एकं रूपं भवन्तः दृष्टवन्तः, यथा माता बालकं वदति, हे बालक विद्यालयं गच्छतु. अत्र क्रियापदं किं दर्शयति, गच्छतु क्रियापद बोलने से क्या पता चलता है, तो माता बोल रही है हे बालक विद्यालयं गच्छतु, हे बालक विद्यालय जाओ. यहाँ क्या है, आज्ञा है. तो आज्ञार्थे लोट लकारः, लकारस्य नाम किम् अस्ति, लोट इति. तर्हि हे बालक विद्यालयं गच्छतु, पाठं पठतु. तर्हि अत्र आज्ञार्थे लोट लकारः इति, तत्र लकाराणां परिचयः अद्य केवल उक्तः, अधिकम् अग्रे गत्वा पठामः. अस्तु, अद्य अत्र एव विरमाम. अद्यतन प्रश्नः अस्ति, भवद्भिः उत्तरं प्रेषणीयं, क्रियापदस्य मूलं किम्. अस्तु, अत्र पाठः समाप्तः. इदानीम् एकं सम्भाषणं शृण्मः. एतत् सम्भाषणम् अस्ति मित्रयोः सम्भाषणं दूरवाण्या. क्या मतलब हुआ, यह एक संभाषण है, दो मित्रों का संभाषण है, और दूरभाषा का उपयोग करके ये संभाषण किया गया है. आइए सुनिए. हरि ओम.
1: हरि ओम, कहा वदति?
0: अहम गिरीशः वदामि मित्र, गृहे कोऽपि नास्ति किम्?
1: सर्वे सन्ति, पिता जपति, अम्बा पूजयति, अनुजौ खादतः, अग्रजा मालां करोति, पितामह पठति, पितामही स्नानं करोति.
0: त्वं किं करोषि, क्रीडसि वा?
1: अहं पठामि, गृहपाठं लिखामि.
0: अद्य अहं गृहपाठं न करिष्यामि, अद्य अहं विद्यालयं न गमिष्यामि, वयं सर्वे मैसूरुनगरं गमिष्यामः. अनन्त त्वम् अपि आगच्छ, मातरं वद.
1: नहि भो, अहम् आगन्तुं न शक्नोमि, भवान् गच्छतु.
0: अस्तु, पुनर्मिलामः, धन्यवादः. इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्. आज हम रामरक्षा के श्लोक पढ़ेंगे 31-38.
2: श्री गणेशाय नमः.
3: श्री गणेशाय नमः.
2: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा,
3: वामे तु जनकात्मजा,
2: पुरतो मारुतिर्यस्य
3: तं
2: वन्दे रघुनन्दनम्.

अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु।

0: सहस्रनाम तत्तुल्यम्
1: सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने
0: इति श्री बुध कौशिक विरचितम्
1: इति श्री बुध कौशिक विरचितम्
0: श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम्
1: श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम्
0: श्री सीता राम चंद्रार्पणमस्तु
1: श्री सीता राम चंद्रार्पणमस्तु।
2: राम रक्षा स्तोत्र पठनम् अभवत्। श्वः पुनर्मिलामः। शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: संयम का महत्व. सामने जब मन पसंद मेवे मिठाइयां रखी हो, चटपटे मिर्च मसालेदार पदार्थ प्रस्तुत हो और मन को भाने वाले व्यंजन रखे हो तो मुंह में पानी आ जाता है, जीभ खाने को ललचाती है और उतावलेपन में बिना सोचे समझे खाते चले जाते हैं हम. लेकिन जीभ का अतिरेक फिर पेट को सहना पड़ता है. जरूरत से ज्यादा खाने का खामियाजा बीमारी के रूप में भुगतना पड़ता है. अतः बीमारी से बचने के लिए चाहिए संयम. संयम के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना लगाम का घोड़ा. इंद्रिय को नियंत्रण से चलाने वाला अद्भुत गुण है संयम. संयम अर्थात इंद्रियों को स्वयं के यानी आत्मिक नियंत्रण में रखकर उनसे कार्य कराना, उचित मर्यादा में रहकर केवल सदउपयोग के लिए शरीर के हर अंग से कार्य लेना, जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में वस्तु और पदार्थों का उपयोग में लेना भी संयमी है. परिवार और समाज में रहते सुरक्षा के लिए बने नियमों का खुशी खुशी से पालन करना भी संयमित आचरण ही है. संयम से ही स्वास्थ्य लाभ होता है और संयमित आचरण करने वाले लोगों से ही समाज सशक्त भी बनता है. व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संयम बहुत जरूरी है. जैसे जीवास्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा खाने पर अपचन होता है. संयम के बिना खाया गया अन्न पेट में पड़े पड़े सड़कर बीमारियां पैदा करता है. ऐसे ही बोलते समय जीभ पर नियंत्रण न रहा तो द्रौपदी के असंयमित बोल के कारण महाभारत युद्ध जैसी विपदा आ जाती है. व्यवहार में दिल दिमाग का संयम नहीं रहने पर व्यक्ति का चरित्र ही बिगड़ जाता है. दिल और दिमाग के संयम को गवाना अर्थात जीवन को असंतुलित करना. जहां संतुलन ना हो वहां सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है. आदर्श जीवन के विकास में जरूरी है नियम पालन से उपजा हुआ संयम. महावीर स्वामी इंद्रिय संयम का पाठ पढ़ाकर अपना आदर्श प्रस्तुत कर गए. अतः संयम को अपनाएं और जीवन को स्वस्थ बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7

0: कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता

0: इजराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: 90.4 FM वेणुधुनी के LE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के LE कंसू।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम ठीक होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की शाम का मजा लूट रहे होंगे। और उसी मजे को दुगना करने के लिए आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त यानी कि RJ आयुष। दोस्तों, आज की अनोखी शाम में मैं लेके जाने वाला हूँ आपको एक अनोखी जर्नी पर और बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो आजकल काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही आपको सुनाएंगे कुछ जबरदस्त गाने आपके मनोरंजन के लिए। तो वो आज का टॉपिक क्या है उसको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और तैयार हो जाइए आज के इस एपिसोड के लिए।

One more time to your favorite show. Be relaxed. आप सुन रहे हैं ध्वनि ध्वनि वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु और मैं हूं आरजे आयुष। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज के इस मैजिकल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, यानी टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी के बारे में जानते हैं। मैनिफेस्टेशन होता क्या है दोस्तों? मैनिफेस्टेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है, उनको बढ़ाने के लिए काम करता है और आजकल ये बहुत ही ज्यादा अटेंशन गेन कर रहा है। साथ ही कई लोग इसको बहुत ज्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट आवर थॉट्स एंड बिलीव्स कैन शेप आवर रियलिटी दैट अलाउइंग अस टू ब्रिंग आवर डिजायर्स इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों सिंपली मैं अगर आपको कहूं तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को या जो भी आप करना चाहते हैं उनको रियलिटी में मानकर या रियलिटी में करना या उनको मानकर जी लेना, जिससे आप और भी एक्टिव हो जाएंगे और उस काम को करने में अपने जी जान लगा देंगे, वैसे ही जैसे हम आपको एंटरटेन करने में लगा देते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, मैं आपको सुनाने वाला हूँ कुछ जबरदस्त सॉन्ग। आपको कर लेनी है आपके रेडियो की वॉल्यूम फुल और सुनते रहना है मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शो भी रिलैक्स चल रहा है और हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। चलिए, अब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको एक सिचुएशन देकर समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि आप कहीं ट्रिप प्लान करते हैं या फिर कहीं जाना होता है आपको, और आप पहले से ही उसको इमेजिन करने लगते हैं कि यार यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, घर हमारा ऐसा होगा, हम यहाँ घूमेंगे। ये क्या है? यही इमेजिनेशन को आप लोग हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बिलीव कर लेते हैं, वो है मैनिफेस्टेशन। और आजकल लोग इसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। कई थ्योरीज में ये भी बताया गया है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तब आप अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को बता देते हैं, जिससे उसके पूरे होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, कर लेनी है आपके रेडियो की वॉल्यूम फुल, और कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम करने वाले हैं इसी के बारे में आगे बात। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु विद RJ आयुष।

और फिर आप सभी के पसंदीदा शो में और आप सुन रहे हैं वीनू ध्वनि 90.4 FM के अली कनासू विद आरजे आयुष। दोस्तों मैं आपको कुछ मैनिफेस्टेशन के फाउंडेशंस के बारे में बताता हूँ। एट इट्स कोर मैनिफेस्टेशन इज फाउंडेड ऑन द बिलीव दैट आवर थॉट्स इमोशंस एंड बिलीव्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये पहले भी एंशियंट टाइम्स में लोग इसे स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस जैसे यूज करते थे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का एक की कंपोनेंट कहा गया है, एक आइडिया जो हर चीज अपनी तरफ आकर्षित करता है, पुल करता है, जो हर फॉर्म में प्रेजेंट है हिस्ट्री में। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा डीप मैं जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए और अपनी उत्सुकता को उतनी ही तेजी से बढ़ाए रखिए और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू विद RJ आयुष।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लिसनर्स ऑफ ऑल द एजेस, और आप सुन रहे हैं ध्वनि ध्वनि वेणु ध्वनि 90.4 एफएम के अली कनसु। वैसे मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार आप लोग बड़े ही प्यारे हो। मतलब क्या ही कहे, जब आप किसी आर्टिस्ट को इतनी प्यार से सुनते हैं तो मत पूछिए, उसका दिल एकदम से भर जाता है और दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन। इट अट्रैक्ट्स एनर्जी एंड अवर थॉट्स एंड इमोशंस आर पावरफुल मैग्नेट दैट ड्रॉ सिमिलर एनर्जीज इनटू आवर लाइफ। और अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारे थॉट्स और इमोशंस पर पॉजिटिवली फोकस करेंगे तो हम लोग वैसे ही लोग और एक्सपीरियंसेस को, अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो ये नेगेटिव चीजें छोड़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करिए और खुश रहिए। साथ ही सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स, जो आता है 5 से लेकर 8 बजे के बीच, आपको देने कई सारी जानकारियां और करने आपका मनोरंजन। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 एफएम के एलई कनसु।

दोस्तों कुछ और टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मैनिफेस्टेशन में आपकी मदद करती है, हेल्प करती है, जो है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। दे टू आर द एसेंशियल टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेंटली आप अपने दिमाग में अपने डिजायर्ड गोल्स की एक इमेज बना लेते हैं। बाय विविडली पिक्चरिंग योर एस्पिरेशंस, वी सेंड अ क्लियर मैसेज टू अवर सबकॉन्शियस माइंड, व्हिच देन वर्क्स इनटू अलाइन अवर एक्शंस एंड डिजाइंस विद दोस गोल्स। वही अफर्मेशंस देखा जाए तो एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन होते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन और डिजायर की एबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप बार बार अफर्मेशंस को रिपीट करोगे तो इट कैन हेल्प रीप्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड, एलिमिनेटिंग लिमिटिंग बिलीव्स एंड प्रमोटिंग अ पॉजिटिव आउटलुक। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम सुपर हिट सॉन्ग्स। सुनते रहिए मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं आप सभी का और हमारा पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 FM पर, जो कि आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है आरजे आयुष, यानी कि मैं। दोस्तों, बिलीफ एंड फेथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनिफेस्टिंग। अगर हम एक पॉजिटिव बिलीफ रखेंगे और साथ ही यूनिवर्स और खुद पर वो फेथ रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो जरूर ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। और दोस्तों, मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली अबाउट इमेजिनिंग और वाइजरली थिंकिंग, इट रिक्वायर एक्शंस टू। अगर मैं सिर्फ सोचते ही रहूं कि मैं ये कर सकता हूं लाइफ में, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव सोचूं और साथ ही पॉजिटिव एक्शंस भी करूं, तो मेरे थॉट प्रोसेस में और वो एक्शंस दोनों साथ में मिलकर अपने डिजायर्स को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। है ना ये अमेजिंग? हाँ, मुझे पता है। वहीं दोस्तों, हमने ये भी याद रखना है कि हमें मैनिफेस्टेशन करते वक्त एक एथिकल कंसिडरेशन माइंड में लेकर आना है, यानी मैनिफेस्टेशन वंस डिजायर शुड नॉट हार्म others और infringe on their rights। उम्मीद है आपको यह समझाई होगा। और अब मैं प्ले करने वाला हूं

हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आता है आप सभी से बात करके, क्योंकि अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो जिंदगी ही सवर जाती है। ऐसे ही सुनते रहिए हमारा शो भी रिलैक्स, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनक सुपर। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। मैनिफेस्टेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स एंड शेप देयर रियलिटी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक सोच के साथ आपको वैसे ही एक्शन भी लेने पड़ेंगे, तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, इंडिविजुअल्स कैन स्ट्राइव टू क्रिएट द लाइफ दे वांट। तो आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको करके दिखाना है। तो दोस्तों, चलिए कीजिए आप भी मैनिफेस्ट, और आप अपने बारे में थोड़ा अच्छा सोचिए और बड़ा सोचिए, क्योंकि सच्ची कहूं तो मैंने लाइफ में बड़ा होते हुए देखा है। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक के लिए आप करिए आपकी इवनिंग्स को एंजॉय, अपनों को वक्त दीजिए, खुश रहिए और साथ ही सुनते रहिए आप सभी का फेवरेट शो बी रिलैक्स, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE खाना सुपर।

गुड इवनिंग, आप ट्यून है वेणु धोनी 90.4 KLE कनसु पे और यादों की बारात में मनीष आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो, लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत सा गीत जो फिल्माया गया है रीना रॉय जी के ऊपर। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और ये गाना है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा सॉन्ग शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है।

अगला गाना मैं आपको सुनवाऊंगी, वो भी है रीना रॉय के ऊपर, फिल्म आ गया अब के सावन में जी डरे, जितेंद्र और रीना रॉय का अभिनय, जैसे को तैसा मूवी का ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1973 में। म्यूजिक है आर डी बर्मन जी का और गाने को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने।

90.4 वेणु धोनी के एलई कनसों पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। गाने को लिखा है इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं अगला खूबसूरत सा गीत जो है जा रे जा ओ हर जाई।

यादों की बारात में आज के एपिसोड में हम रीना रॉय के ऊपर फिल्माए गए सॉन्ग सुन रहे हैं, जिसमें अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है जलता है जिया मेरा। जख्मी मूवी का ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1975 में।

अगला गाना हम सुनेंगे ये आंखें देख कर, लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर और हृदयनाथ मंगेशकर जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए, जो फिल्माया गया है रीना रॉय के ऊपर। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 KLE कनेक्शन।

वेणुधुनी 90.4 के एल ई कनसूबे आप ट्यून है, यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो फिल्माया गया है रीना रॉय के ऊपर। अर्पण मूवी का ये सॉन्ग है जो मूवी आई थी 1983 में। लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत सा गीत जो है परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

निम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।
1: यादों के

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आप

तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।